वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साग सैन मुख पया बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर उपर सुख बस है सुत परात मीत बनता संग हस है जिह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमला जिह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संग साथ बसा

कहे। जिह प्रसाद सुन करन नाद, जिह प्रसाद पेखे विसंवाद, जिह प्रसाद बोलहे अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद परम गद पावे, जिह प्रसाद सुख सहज सुमावे, ऐसा प्रभ त्यांग बरकत लाघ, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो।

ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कह ब्रह पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म

प्रकारस्पदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते।

कई कोड अंध ज्ञानी, कई कोड कृपन कठोर, कई कोड भेगात्मिन कोर, कई कोड पदर्भ को हिर है, कई कोड पर दुख न कर है, कई कोड माया श्रम माह, कई कोड प्रदेश प्रमा है, जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना, कई कोड सिद्ध जति जोगी, कई कोड राजे रस भोगी, कई कोड पंखी सर पे उपाय, कई कोड पाथर वृक्ष ने बजाय, कई कोड पवन पानी बैसंतर, कई कोड देश भूमंडल, कई कोड ससियर सूर नक्षत्र, कई कोड देव दान इंद्र सर शत्रु,

सब कोय मुख दिल हर दरगे सोए इहो अपार विरलाव पारे नानक ताके सद बरहारे चरण साध के तोए तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध कित हुर कर स्नान साधु पर जाइये कुरबान साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाये हर गुण गाये अमृत रास चाखे वट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक तेह पायो मृत कौ जीवालन हार भूखे को देवे ते आधार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे कालह न पाहे

हुकम बिछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे कि न जानो आठ पहर प्रभु बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तन की उडले मन तने अपना तन जन देह जिन जन अपना प्रभु

सुख साधु संग प्रीत जेह सोभा कौ करहे बलि करनी सा सोभा पधर की सरनी अन की पावी रोग न जाय रोग मिटे हर वखत लाय सर्वन दान मह हर नाम दान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबोध हर कह नाय दय दाव दे आवे ठाए ताको बिघन न लागे कोई जागरे दे बस हर सोए करता ती ठांडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ पहो बिन से पूर्ण हो आस भक्त पाए आतम प्रगास तित घर जाए बसे बनासी कहो नान काटी जम फांसी

लाख सोग्यों बिसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरु पूरा तत् है बुझाया प्रभु प्राणा नु जंत आया साजन संत करो एहु कामान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख

सुनै सा सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनै अड़सठ का सुनान। सुनै पड़ पड़ पावे मान, सुनै लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास।

निधान है, त्रिपर्ग है, असर्वग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवरण है, अभूत है, अपर्ण है, अगांज है, अभांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, नरसु नरसु नरभूज है।

अशूत है, आलोक है, अशोक है, या कर्म है, या भ्रम है, या जीत है, या पीत है, या बाह है, या गाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियंग प्रियाद छंद। नमो सर्वमान्ये नमस्ति निदान, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी परमाथे, नमो

स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राजरजेश्वरं नमो परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धाय

चर्पण शांत प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता

मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पार हमरे दुष्ट सबे तुम काबो आपा दे मोहे बचाव सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबे कुरतार।

पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनद वाजे।

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान जन सारिया।

कहे नानक सेप वेता गुरमुख, कहे नानक सेप वेता जिनी गुरमुख हर हर ध्याया। करमी सहज ना उपजेवन सहजे सहसा ना जाए, न जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मली नायक संयम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजाए, जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम यू तुम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया। कहे नानक जन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कुमाणी। कूड़ की सोहे पहुंचे नाई मनसा सच सुमाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारी। कहे नानक जिन मन निर्मला सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेती सरमुख हुवै।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती दी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। हरे अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दयावे ताय। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जीओ। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां

0: नानक नाम मिले ताजी तन मन थी वे हारे, नानक नाम मिले ताजी तन मन थी वे हारे, भले अमरदास गुण ते तेरी उपमा तोहे बाणी, भले अमरदास गुण ते तेरी उपमा तोहे बाणिया, कन्हार बूंद बसो रोमा कुसुम बसंत गणत ना आप, कन्हार बूंद बसो रोमा कुसुम बसंत गणत ना आप, रब सस किरण उदर सागर गंग तरंग अंत को पावे, रब सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान गया सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे, रुद्र ध्यान गया सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण ते तेरी उपमा तोहे बाणिया, भले अमरदास तेरी उपमा तोहे बाणिया, भले अमरदास गुण ते तेरी उपमा तोहे बाणिया, भले अमरदास गुण ते तेरी उपमा तोहे बाणे, भले अमरदास गुण ते हम मैले तुम उज्जल कर, हम मैले तुम उज्जल कर, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता,
1: हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला
0: का ज्ञाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता,
1: हम पापी
0: तुम पाप खंडन निको ठाकुर
2: देसा,
0: हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर देसा,
1: तुम सब साजे
0: सब माजे
1: जियो पिंड
0: सब दे, यो पेंड
1: तुम सब साजे साजे जियो पेंड सब दे, हम निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे ओ मेहरबाना,
0: तुम करो पला हम पलो न जाने
1: सदा सदा दयाला,
0: तुम करो पला हम पलो न जाने सदा सदा दयाला,
1: तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला,
0: राखो अपने बाला
1: निधान अटल सुल्तान
0: जी जान सब जान,
1: निधान अटल सुल्तान
0: जी जान सब जान, कौन नानक नाम के
1: माला राख संतन के पाछे,
0: कौन नानक नाम के
1: माला
0: राख संतन के पाछे, क्या श्री श्याम
1: गोविंद मुकुंदे
0: उतारे अपार
1: हरिया
0: हरिया
1: नाम
0: गोविंद
1: मुकुंदे
0: उतारे अपार हरिया नाम में अकाम टाटी दर पर डर कदे न छोड़े, टाटी दर पर डर कदे न छोड़े, मन रत्ता गोविंद संकट को जन छोड़े, मन रत्ता गोविंद संकट जन छोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, राज मिले खुशियां कड़ी मुख न मोड़े, राज मिले खुशियां कड़ी
1: क्या मुख न मोड़े,
0: ढाडी दर पर
1: मंगड़ा दर कदे न छोड़े,
0: ढाडी दर पर
1: मंगड़ा दर कदे न
0: छोड़े, नानक मन तन जाओ ए नित प्रभु को लोड़े, नानक मन तन जाओ ए नित प्रभु को लोड़े, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही नरक का तू सदा सलामत मन का, तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्रा बेन अपनी भक्ति लाए, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव तू ही नरका तू सदा सलामत नरका, तू ठाकुर उच्च भगवान नानक की प्राबेन अपनी भक्ति लाए, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम भुल चक दर्शन कमला बहुत बहुत धनबाद, नानक नाम चढ़दी तेरे
1: भाए
0: वाहगुरु जी का
1: वाहगुरु जी
0: का, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल,
2: सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, तना श्री मल्ला नावा साधो ए जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बेकाना, साधो यो जग भरम भुलाना, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜਿਆ ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਖਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਜੋ ਮਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਿਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪੰਨ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਨਾ। ਜਾਨਾ ਨੀ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ